मेरे प्यारे, प्यार के रंग होते हैं हजार, पहला रंग बताओ। हाँ, अरे चुप्पे लल्लू राम, ये तो आखिरी रंग होता है।

0: मंत्रों साथ में करूं।
1: पापा तो मम्मी के साथ बाहर गए हैं।
0: ये किताब उन्हें दे दीजिएगा और कह दीजिएगा कि मैं आया था।
1: हाँ।

अरे गदकू, ओ पांड्या, अरे ओ धोंडिया, अजी गधव प्रसाद, अमा छनमिया, अरे ओ बिच्छू महाराज, ओए बड़बड़ सिंह, तने किधर पधारो और सुनो मेरी कथा जिसमें भरी है भीषण व्यथा। ई गलियन का धर्म अलग है, अलग है रीत रिवाज। का समझे ना समझे तो समझ लो हमसे,

लटकाऊ लटकाऊ, कभी झटकाऊ झटकाऊ, कभी ठुमकाऊ ठुमकाऊ, कभी मटकाऊ मटकाऊ, लचक लचक चमक चमक, झटक झटक मटक मटक, पलट तेरा ध्यान किधर है भाई।

जमादार पकड़ लो इन बंदरों को और सुनो सुनो इन घोंचू पाखंडियों की कार्यक्रम। अरे वड़की जिनको सुनकर टूट जाएंगे तुम्हारे सारे भरम।

रख रुक जा, ये मामा मामा मांड के हरवा के ठेठे ठेके भुला कर दादरे के कुकू कुएं में कैसे कुकू कुकू कुकूत पड़ा, निकल बाहर, पलट पलट पलट, तेरा ध्यान किधर है भाई।

बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा? हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए।

0: बाटे के बूट पर, क्यों भाई मैंने ठीक कहा।
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना

आइए, अरे आइए ना, तशरीफ लाइए। कमाल है, पहली बार आए हैं हमारे घर आप। अजी पहली बार आपसे हुआ है मिलाप। कहिए कहिए ना, कहिए कहिए कहिए ना।

खुदा की तरह अकेली। आओ आओ ना, क्यों घबराते हो? क्या हमसे कोई खता हो गई? कुछ नाराज नजर आते

के फुर्सत मिली बहुत दिनों के बाद, पर बड़ी उम्र है आपकी, अभी किया था याद।

तो धर्म कर्म वाले हैं, समझी? अजी हम तो धर्म कर्म वाले हैं, तू है बेशरम। हम तो धर्म कर्म वाले हैं, तू है बेशरम। तुझसे अच्छे घर मेरे झाड़ू लगाती है, तुझसे अच्छे घर मेरे झाड़ू।

0: छिपता सूरज भी कितना खूबसूरत लगता है।
1: हाँ, मगर इसके बाद अंधेरा छा जाएगा।
0: मैं वक्त के कदमों को रोक लूंगा।
1: वक्त वो तो हमें बहुत

0: एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो तुम्हें रोशनी किए देती हूँ।
1: जस्सिम चांदनी हो तुम, अंधेरा है तो रहने दो मुझसिम चांदनी।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,